इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

Thank you.

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show, Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

पांडे जी तो नहीं है पर हम आवे हैं आपसे बात करत के लिए। रेडियो चैनल पर आगा सो चुका है सूचना और बीट्स का। नहीं नहीं नहीं, आपने अगर ये सोच लिया है तो आप बिल्कुल गलत है। शो व्हाट्सएप का टाइम है, जोश तो नहीं है पर मैं आ गई हूँ और उनकी ड्यूटी निभा रही है। यानी कि देखिए वो थोड़ा दूर है लेकिन हम तो आपके नज़दीक है और टाइम आ चुका है आपसे ढेर सारी बातें करने का। सो व्हाट्सएप पे आज मैं देखूँगी कैसी वाइब ट्राइब होती है, एनर्जी कैसी है और जाने आई हूँ व्हाट्सएप कश्मीर।

0: Come on, Aya.
1: शो व्हाट्सएप स्टार्ट हो चुका है लेकिन ज्यूस तो नहीं है. मैं हूँ आपके साथ और ढेर सारी बातें करने आई हूँ ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 FM. और क्या कुछ होगा आज बराबर 10 से जी हाँ 2 बजे तक अभी मैं आपके साथ हूँ. ढेर सारी बातें करूँगी. व्हाट्सएप भी है, चुनाव बीट से आज थोड़ा मिक्स एनर्जी है मामा. तो मैंने तो देखिए देखो मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ ना कि जो सुबह सुबह आए हाय सुबह सुबह मज़ा आ जाता है सोने में. सुहागा वाली बात ही सुबह आ जाए और आपको पता हो कि आज एक्स्ट्रा टाइम है यानी सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज ऐसा ही. आई नो कि आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब आपको पता चलता है कि आज तो एक्स्ट्रा टाइम है. सो आज बात है तो बेशुमार होगी. Well, I'm super duper excited क्योंकि अभी मैं देखूंगी कि आखिर क्या चल रहा होता है शो व्हाट्सएप पर. सो मैं यहाँ पर हूँ, अब यहाँ पर है. शो कैसा बन जाइए 8999-0409-04 पर आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं. देखिए सूरज चाचू सुबह सुबह जागे और मेरा दिमाग भी जाग चुका है, ताज़ा हो चुका है और पता है कि आज तो बहुत ज़्यादा काम करना है. और हाँ,

मजा भी है ना इस काम में. और बैक टू एक सॉन्ग्स भी हम आप तक पहुंचाते हैं. देखिए आपकी इतनी फरमाइश पे ना आप रोज बोलते हैं आप कब और थोड़ा टाइम हमारे साथ स्पेंड करोगे. देखिए आपकी फरमाइश पे आ चुकी हूँ. मौका है चौगा मार लीजिए बैक टू बैक सॉन्ग्स ऑन योर रेडियो 90.4 FM. या मैं उसकी तरह बोलूँ नाउ सिफर सोर कॉल कीजिए शो कैसे बन जाइए. आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

ऑब्जर्व किया गया है। नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं। स्लो मोमेंट है बट गाड़ियों को लोड किया जा रहा है, सो आप आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। सो फिलहाल के लिए यही है कि आपने अपना ख्याल रखना है, सीट पर लगा के गाड़ी चलानी है, ड्राइविंग एसओपीज़ को फॉलो करना है और बिल्कुल गलत जगह पे ओवरटेक नहीं करने का बॉस, वो तो फिर काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो हम लगता है हमें काफ़ी चालाक है और शायद से ट्रैफिक पुलिस जो है नज़र नहीं पड़ेगी। सुबह थी ग्यारह यानी कि जब फाइन होता ना फिर हमें कितना नुकसान होता है, हम फिर खुद समझते देखिए ये पैसे कहीं और लग जाते, अब फाइन पड़ रहा है। सो बी केयरफुल, बी कॉशियस, हम भी चाहते हैं कि आपका नुकसान ना हो, आपका फ़ायदा हो। व्हेन वी से वी केयर फॉर यू, वी मीन इट। सो फिलहाल के लिए बातें चल रही है, बहुत सारी बातें हैं, शो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप, जी हाँ व्हाट्सअप शो में आप ही शो का हिस्सा बनकर कुछ बता सकते हैं, शो का हिस्सा बन सकते हैं। सो कैसी थी संडे, कैसा था वीकेंड, हाउ वाज योर एनर्जी एंड हाउ इज द वाइब राइट नाउ, 8899-04904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सअप कीजिए, शो का हिस्सा बन जाइए। नहीं बता दीजिए, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड होती हूँ जब आप अपना दिल का हाल हम तक पहुँचाते हैं। अब आज तो मौका है, दस्तूर है, कहाँ जाने का हुजूर, एंजॉय कीजिए यहाँ पर सॉन्ग्स बैक टू बैक ऑन योर रेडियो 89.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

देखिए, जो लाजमी होता है वो हो ही जाता है। अब कमी ऐसी थी कि पूरा करना पड़ा इसको, यानी कि बात हो रही है आज आपके और हमारे बारे में। स्पेशली दिस इज़ द टाइम, क्योंकि आज मैं बराबर यहाँ पर 10 बजे जुड़ी आपसे बातें की और अभी शुरुआत ही हुई, यानी कि मैं 2 बजे तक आपके साथ रहूँगी। एंड कितनी सारी बातें जो अधूरी है और कभी कभार ये मुमकिन नहीं होता है कि आपसे हम गुफ्तगु करें, लेकिन आज तो गुफ्तगु बनती है, बिकॉज बस मैं आऊँ, आप यहाँ हैं, जज्बात है, हालात है, ख्यालात है, आप है, हम है, और क्या चाहिए। सो बस आपने भी शो का हिस्सा बनना है। 8899-0494 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाइए। इट्स व्हाट्सएप एंड चुनार बीट्स, आप आज मेरे साथ सुन रहे हैं शो व्हाट्सएप एंड चुनार बीट्स।

0: मैं हूं आरजे ज़ियूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

अभी तो यही हाल है कि हमारे जो लिसनर्स है ये बोल रहे कि आप जब आते हो ना और एक्स्ट्रा टाइम के साथ आते हो ना तो बड़ा ही मज़ा आ जाता है. सो मैं भी बड़ी खुश हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है शो व्हाट्सएप पे आपके साथ बात करके. व्हाट्सएप का एक अलग ही देखिए वाइब है, मैं तो कहूँगी वाइब ट्राइब है इसकी अलग ही है. एंड आई एम श्योर आप जो उसको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे होंगे, बट मैं हूँ ना यहाँ पर, मैं हूँ उनकी कमी को पूरी करने के लिए. सो मैं हूँ, आप हैं, मगा हैं, दस्तूर है, कहाँ जाइए हुजूर, शो का हिस्सा बन जाइए. 8899-04904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो का हिस्सा बन जाइए. शो व्हाट्सएप आज जूस तो नहीं है, दीबा हूँ. आप सुन रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM.

0: हाय मैं हूँ आरजे सियूस।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: zoos.
1: Kona jo.
2: Zeus.

ज्यूस तो नहीं है, मैं हूँ आपके साथ शूचना और बीट्स वाज़ा मिलके आज आप इंजॉय कर रहे हैं। अभी तक जो है ज्यूस ने बहुत सारी बातें की होती है, लेकिन मैं तो ज्यूस नहीं हूँ और मैं भी बातें तो कर रही हूँ लेकिन अपने अंदाज में, और बात उन्होंने की होती अपने आज के टॉपिक के बारे में। So, क्या है आज का टॉपिक बता दूं मैं आपको। आज बात हो रही है स्पाइसेस ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि मसालों। देखिए, मसाला ना होना जिंदगी में मजा नहीं आता, और ये मजा आने के लिए जरूरी है कि मसाला हो जिंदगी में। अब चाहे खाना हो, जिंदगी हो, मसाला हो, विदाउट ड्रामा क्या ही है, वो जिंदगी लगती ना फीकी है। ऐसे मसालों से ही तो है कि हमें लगता है कि स्वाद आ गए।

सो मैं भी हूँ मसाले है, और आपको अपने देश के मसालों के बारे में क्या पता है, कितनी नॉलेज है और मुझे भी कितनी पता है. आज हम मिलके बात करेंगे शो व्हाट्सएप पर स्पाइसेस ऑफ इंडिया के बारे में. सो आर यू रेडी? बिकॉज आई एम रेडी, क्योंकि मुझे बड़े मज़ा आ रहा है. आज सुबह सुबह जो मैं स्टूडियो में आई, एक अलग ही वाइब थी, ट्राइब थी जोस के शो की, और अभी मुझे भी मज़ा आ रहा है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं मसालों के बारे में. अब मिर्ची थोड़ी मसाला होता है, मसाले तो बहुत किस्म के होते हैं. अब ये मुझे बताइए, और कितने मिसकंसेप्शंस है आपको आपके दोस्तों के अबाउट मसाला, बताइए शो का हिस्सा बन जाइए. टेक्स्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, बना सकते हैं आप अपने दोस्तों के बारे में क्या है वो मसाला ड्रामा, यानी कि मज़ा जिसके बगैर लगता है कि अधूरा है. मैं तो कह रही हूँ कि मुझे आपके बगैर अधूरा लगता है. पूरा कीजिए साथ, सुना लीजिए कोई मज़ेदार सा किस्सा बनके शो का हिस्सा. 8 8 9 0 4 9 0 4 ये नंबर है, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए.

0: to Zeus.
1: Kom nou ja.
2: Zeus.
3: शो व्हाट्सएप पे जूस तो नहीं है, मैं हूँ आपके साथ रेडियो चुनाव 90.4 एफएम. आप सुन रहे हॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्पाइसेस ऑफ इंडिया. एंड इंडिया इज द ग्लोबल पावर हाउस ऑफ स्पाइस इंडस्ट्री, प्रोड्यूसिंग अबाउट 4.52 बिलियन वर्थ ऑफ स्पाइसेस एंड काउंटिंग फॉर रफली 75 ऑफ एंड 109 वराइटीज रिकग्नाइज्ड बाय ISO.
2: Yes.
3: अब ये तो हम सबको ही पता है कि एक लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसर होने के नाते, एक्सपोर्टर होने के नाते, अगर हम देखें तो अभी इंडिया में अगर हम देखें सबसे ज़्यादा स्पाइसेस का ट्रेड होता है. 40% ऑफ ग्लोबल स्पाइस जो है वो हमारे देश से ही आता है. और टॉप एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो टॉप एक्सपोर्ट्स में भी वॉल्यूम हो, वैल्यू हो, मोस्ट एक्सपोर्टेड एंड प्रोड्यूसर स्पाइसेस आर चिली, क्यूमिन, टर्मरिक एंड जिंजर, कोरिएंडर. यानी कि ये स्पाइसेस जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से. एंड इफ यू टॉक अबाउट व्हाट आर द स्टेट्स, की स्टेट्स दैट मेजरली प्रोड्यूस स्पाइसेस एंड वी कैन सी दैट्स अ हब स्पैन ऑफ द कंट्री दैट इंक्लूड्स मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश and Kerala. It's Kerala. Show what's up and we are talking about spices of India and famous spices, culture, value की यहाँ पर बात आती है. हमारा कश्मीर थोड़ी पीछे रहेगा. सैफ्रॉन, यानी कि कश्मीर में सबसे ज़्यादा सैफ्रॉन कल्टिवेशन होता है. अबाउट 75,000 हैंड पिक्ड ब्लूम्स टू यार जस्ट वन बाउंड. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कितना ज़्यादा हमारा कंट्री स्पाइसेस प्रोड्यूस करता है और कैसे हमारी कंट्री मानी जाती है स्पाइस प्रोडक्शन में. Well, आपको क्या है कहना, आपके क्या है थॉट्स, 8999-0904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए. शो का ऐसा बन जाए, आप सुन रहे शो व्हाट्सएप और कुछ ही देर बाद बॉलीवुड न्यूज आप तक पहुंचाएंगे. आप कुछ कहना चाहते हैं, शो का ऐसा बनना चाहते हैं, 8999-0904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो का ऐसा बन जाए.

0: Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: हाय, मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM।

व्हाट्सएप एंड व्हाट्सएप शो में एक सेगमेंट बॉलीवुड न्यूज़, जिसमें आपको बॉलीवुड की तड़कती फड़कती खबरें मिलते हैं. और खबरें मिलने की जब बात आती है तो हम सबसे ज़्यादा हाजिर हो जाते हैं, कान खड़े हो जाते हैं कि भाई

क्या है अभी नया जो चल रहा है मार्केट में. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट धुरंधर 2. देखिए बॉक्स ऑफिस में तो कमाल ही कर दिया, 1800 crore वर्ल्ड वाइड. इट्स मैसिव मैसिव हिट एंड आई कैन से एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ऐसी मूवीज, स्पेशली जब हम धुरंधर की बात करें, धुरंधर 2 की बात करें. सो इट्स टोटली अमेजिंग एंड रणवीर सिंह के लिए एक काफ़ी ज़्यादा एक वो इम्पैक्ट, काफ़ी एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि लोग इन्हें और भी ज़्यादा पसंद करने लगे. एक एक दबदबा बन गया है भाई का. वही अगर हम बात करें तो OTT का हमेशा रिलीज का काफ़ी इंतज़ार होता है. सो अभी के लिए पीपल आर लाइक कि नेटफ्लिक्स पे शायद मूवी आएगी, बट जियो हॉटस्टार ने इस चीज़ को कंफर्म किया, यानी कि जियो हॉटस्टार ने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि ये जो अनएडिटेड वर्जन है वो हम दिखाएंगे स्क्रीन ज़्यादा टाइम रहेगा ऑन June 4 आफ्टर अ डिजिटल राइट्स डील वर्थ 1 crore 50. यस यानी कि 1.5 crore तक जो है इन्होंने डील किया है, डिजिटल राइट्स डील रही है. एंड 4 June को जो है धुरंधर 2 OTT पे रिलीज होने वाली है एंड दिस टाइम इट्स नॉट ऑन नेटफ्लिक्स बट इट्स ऑन जियो हॉटस्टार. सो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस एंड कितनी खुश है आप और ये बॉलीवुड न्यूज सुन के आपको कितना मजा आ गया? समय बताइए शो कैसा बन जाइए. और कुछ ही समय के बाद जो है हम फाइनली एक और बड़ा, और क्या है वो बड़ा वो आपको बताइए, मुझे भी पता है बट मैं सुनना चाहती हूँ आपसे. 8 999 0 4 9 0 4 text WhatsApp कीजिए शो व्हाट्सअप कैसा बन जाइए.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

देखिए इजाजत मिल चुकी है क्योंकि शो का टाइम स्टार्ट हो चुका है. वेल आई एम हियर फ्रॉम आई मीन 10 एंड व्हाट्सएप शो तो जूस का खत्म हो चुका है, लेकिन अभी मेरा शो स्टार्ट हुआ है वाइबन ट्राइब. ये सारी बातें तो ये दिल की बातें होती हैं. आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज जोश बना रहे भैया जी. एंड यही है कि सफ़र की तो शुरुआत थोड़ी अर्ली हुई है, पर बातें चल रही हैं. एंड I'm here. आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM, क्योंकि यह है हर दिल की धड़कन.

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

मुस्कुरा तो ले ही लेते हैं जब हमें ये रियलाइज होता है कि समर इज ऑलरेडी हेयर एंड वी आर एंजॉइंग इट एंड वी हैव लॉट ऑफ गोल जो हमने इस समर एग्जीक्यूट करने हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट समर गोल्स एंड प्रोडक्टिविटी. सो क्या गोल्स है, क्या चीज़ें हैं जो आप मुझे भी टिप देना चाहते हैं तो मैं तो सुनने के लिए रेडी हूँ. 8899-0404 पर आप कॉल टेक्स्ट मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि आपके समर गोल्स और प्रोडक्टिविटी क्या होने वाली है. शो का हिस्सा बन जाइए बिकॉज इट्स हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो चुनाव 90.4 FM. 8899-0404 टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए, शो का हिस्सा बन जाइए.

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही

0: पीने के लायक है और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats ve Darce Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आए थी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हाय मैं हूँ आरजे सूज।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

चलिए वक्त आ चुका है आपसे इजाजत लेने का, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मोम में इनको बड़ी जल्दी है, अभी हंस रहा है सामने, बोल रहा है अभी खाना खाना है। और देखिए लंच टाइम में ना अभी म्यूजिक भी हो, ड्रामा भी हो, यानी हंगामा शुरू शुरू शुरू होने जा रहा है, तो फिलहाल मैं तो जा रही हूँ। मेरी तो अभी आपसे यही विनती है कि आप जी भर के खाना खा लीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड आई एम लिविंग। आप अस्ट्रा के साथ बाकी बातें कीजिएगा, फिलहाल मोमेंट बड़ा बिल्कुल जबर नहीं हो रहा है, इनसे क्या ही किया जाए। आप अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं 12 बजे, और सुनते रहे रेडियो 90.4 FM, ये है दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगढ़ लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026। इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट क्रिकेट एंड क्रिकेट। ऑफिशियल रेडियो पार्टनर रेडियो चिनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं।
1: अरेस्ट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द ड्रग क्राइसिस दैट हैज बीन प्लेगिंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स।

0: जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

दिल की बात साहिल के साथ ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

Chinar Beats with Dhar Chediba, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनाव।

Jerry B. Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिंदा जिं

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: तुझे याद है ना आज पापा तुझसे बात करने वाले हैं?
2: उन्हीं से मिलने की तैयारी कर रहा हूँ।
1: सलून में?
2: लड़कों की खूबसूरती सलूनों में नहीं, बैंकों में निखरती है। अगर आज लोन पास हो गया ना, घर और घरवाली एक साथ फिक्स हो जाएंगे।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम किंग खान शाहरुख खान के नाम है।

रेडियो चनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम किंग खान शाहरुख खान के नाम।

रेडियो चनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम किंग खान शाहरुख खान।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।
2: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
3: आप सुन रहे हैं सुहानी शाम ऑन रेडियो चिनार 90.4 एफएम और आज की सुहानी शाम 90s की मेलोडी के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम वीरू यानी धर्मेंद्र के नाम।

0: 90.4 रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन,
1: दिल को करार आ जाए जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4 एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मगर

दिन, आराम, राति, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम। दिल को
0: करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात
0: लेकिन
1: एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।
1: हाँ,

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे कहिए ना।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूँ गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूँ न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: फोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे खटरिया, ओ सवरिया।

0: के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,

0: हम थे वो थी और समार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा, मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा। अप!

मैंने खींचा आ हा हा। घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा। हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: जाते हैं
1: मेरी जूती से।
0: जूता पॉलिश करेगा, आह जूता पॉलिश करेगा, लेकिन तुम पर मरेगा। चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोह

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।